0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
1: The discussions also
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: Can enter the Venezuelan market successfully.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मध्यम लहरी 512.8 मीटर्स म्हणजेच 585 किलो हर्ट्झवर आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे। 6:05 झाली आहेत।

0: छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा।

0: और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज पीसीपीआईआर और सरिगाम जीआईडीसी में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
2: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार

0: विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
1: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2 से 6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस सेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दर में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसा।
0: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत यह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
3: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्र

राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे स्तर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज

0: सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
1: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा ना हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे, लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ, नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Naresh Mago. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and Constitutional Expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says US pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch-rivals Pakistan in semi-final of Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament in Japan today. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat in Gujarat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in road, power and industrial sectors. Mr. Modi will first visit Hazira and will review the ongoing industrial and infrastructure projects before addressing a large public gathering in the afternoon. Later in the evening, the Prime Minister is scheduled to visit Daman to inaugurate and lay the foundation stones for various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. A report from our correspondent.
3: In a major boost to regional infrastructure, Prime Minister Narendra Modi will dedicate key packages of 8-lane Vadodara-Mumbai Expressway to the nation today, significantly enhancing connectivity between Gujarat and Maharashtra. The Prime Minister will also lay the foundation stone for the 4-laning of critical sections of National Highway 56 to improve access to tribal regions and Statue of Unity. Catering to public welfare, the Prime Minister will also inaugurate a modern 200-bedded ESIC hospital in Surat.

0: तो इस सिचुएशन में प्रिकॉशंस लेके हम लोग ये प्रोसीजर करते हैं। तो उसके अंदर में क्या करते हैं, जो पेट रहता है, पेट का हिस्सा, उसको पूरा लेड शील्ड से कवर कर देते हैं।
1: अच्छा हाँ।
0: लेड शील्ड से कवर करके उसको पूरा
1: हाँ।
0: चारों तरफ से कवर कर दिया, तो जो एक्सरेज हैं उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, या पेनिट्रेट कर भी रहे हैं तो कम मात्रा में करेंगे,
1: जी
0: दूसरा
1: इफेक्ट नहीं होगा
0: इफेक्ट
1: उसका।
0: नहीं होगा। दूसरा, जब हम एंजियोग्राफी करते हैं तो दो मोड होते हैं उसमें, एक फ्लूरोस्कोपी मोड होता है जिसमें रेडिएशन का डोज कम होता है, और एक सीने एंजियोग्राफी मोड होता है जिसमें रेडिएशन का डोज ज्यादा होता है।
1: जी
0: तो ये पेशेंट में फिर सीने एंजियोग्राफी नहीं करके फ्लूरोस्कोपी ही किया जाता है, और फ्लूरोस्कोपी की भी कोशिश करते हैं कि जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो 3 से 4 मिनट से कम रहे। टोटल क्यूमुलेटिव ड्यूरेशन ड्यूरेशन जो है, यदि 3 से 4 मिनट से कम रहा,
1: कम रहे।
0: लो डोज फ्लूरोस्कोपी विदाउट सीने एंजियोग्राफी विद एब्डोमिनल शील्ड यदि हमने किया तो

0: मोड होते हैं, उसमें एक फ्लूरोस्कोपी मोड होता है जिसमें रेडिएशन का डोज कम होता है, और एक सीने एंजियोग्राफी मोड होता है जिसमें रेडिएशन का डोज ज्यादा होता है। तो ये पेशेंट में फिर सीने एंजियोग्राफी नहीं करके फ्लूरोस्कोपी ही किया जाता है, और फ्लूरोस्कोपी की भी कोशिश करते हैं कि जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो 3 से 4 मिनट से कम रहे। टोटल क्यूमुलेटिव ड्यूरेशन जो है 3 से 4 मिनट से कम रहा। लो डोज फ्लूरोस्कोपी विदाउट सीने एंजियोग्राफी विद एब्डोमिनल शील्ड यदि हमने किया तो हम ये कर पाते हैं, तो बैड इफेक्ट नहीं होगा। तो एक स्पेशल सिचुएशन है जिसमें हार्ट के वॉल में चोकअप है, माइट्रल स्टेनोसिस। जो माइट्रल स्टेनोसिस के पेशेंट हैं उनको प्रेगनेंसी में तो तकलीफ होती है, लेकिन डिलीवरी के समय वो हार्ट फेलियर में जाने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, और उनके लंग्स में पानी भर के कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए प्रेगनेंसी का 7वें महीने का जो समय रहता है, 6वें से 8वें महीने के बीच का जो समय है, उस समय ये वॉल को बलून से ओपन किया जाता है, और उसके लिए पेशेंट को कैथ लैब में लेना जरूरी है। तो विद प्रिकॉशन हम बलून माइट्रल वॉल्यूलोप्लास्टी प्रेगनेंसी के समय भी कर पाते हैं।
1: एक श्रोता है लाइन पर। हेलो।
2: हेलो,
1: हाँ जी,
2: हेलो,
0: हाँ बोलिए।
2: हाँ सर, मैं आप ही के पेशेंट हूँ। सर मैं एक पूछना चाह रही थी कि एंजियोप्लास्टी के बाद मेरी बीपी उसके पहले बढ़ती थी, अभी की नहीं अपने आप ही कम होते जा रही है, 130 के कभी कभी बिलो ही रहती है।
0: हाँ।
2: तो ये धूप के वजह से होता है, और कभी कभी क्या होता है मैं रात में आर्बिटल करके आधी गोली ले लेती हूँ फिर कभी। और कितने होने से लेना चाहिए और कितने होने से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि टाइड भी लेती हूँ, बाद में फिर प्रोलोमेट लेती हूँ, जो भी है मेरे सिक्वेंशियल दवाइयां मैं लेती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा कभी कभी कम बीपी होने से दूसरे दिन मुझे थोड़ा लूज लगने लगता है। तो एक बार मैं बीपी नापती हूँ और बाद ही में थोड़ा सा डोज जो है 20 का एमजी का आर्बिटल उससे कम लेती हूँ, फिर रात को अगर ऐसा लगे कि 130 के ऊपर जा रहा है बीपी तो मैं वैसे करती हूँ फिर, क्योंकि दूसरे दिन फिर मुझे ज्यादा लेने से 20 mg लेने से थोड़ा लूज लगने लगता है।
0: मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मुझे सब आपके जैसे एजुकेटेड पेशेंट मिले जो इतना डिलीजेंटली अपने मेडिसिन के डोज एडजस्ट कर रहे हैं,
1: चेक करके
0: दे रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आप इतना अच्छे से खुद का केयर कर रही है। यदि मेरे पेशेंट सब पेशेंट इस तरीके से अपने आप को ट्रीट करने लगे तो मेरी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वे शी इज डूइंग इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। वो जो दीदी कर रही हैं वो जो एग्जैक्टली हमें चाहिए वैसा कर रही हैं। तो जैसा वो उनके जो रेगुलर डोजेज हैं टाइड प्रोलोमेट के वो ले रही हैं, उसके बाद यदि बीपी 140 के ऊपर रहने लगे,
1: सुबह शाम चेक भी कर रही है,
0: हाँ सुबह शाम चेक भी कर रही है, तो जैसा उन्होंने टाइड प्रोलोमेट का रेगुलर डोज लिया उसमें ब्लड प्रेशर देखते समय हमारे पास 2 ब्लड प्रेशर है, एक ऊपर वाला सिस्टोलिक और नीचे वाला डायस्टोलिक। ऊपर वाला जो सिस्टोलिक है वो हमें 100 से 140 चाहिए, नीचे वाला डायस्टोलिक जो है वो 60 से 90 चाहिए। तो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर यदि 100 के नीचे है तो डोज स्किप करना है, 100 से 140 है तो नॉर्मल डोज लेना है, 140 से अधिक है तो एक्स्ट्रा डोज लेना है। ठीक है, वैसे ही नीचे वाला ब्लड प्रेशर 60 से 90 है तो यदि 60 से 90 है तो सेम डोज, 90 के ऊपर है तो डोज बढ़ाना है, 60 के नीचे है तो कम करना है। बहुत बार हम पब्लिक मैंने नॉर्मल पेशेंट जो ये दोनों चीजों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, हम बोलते हैं कि भाई आप नीचे वाला ब्लड प्रेशर छोड़ दो, आप ऊपर वाले ब्लड प्रेशर पे ध्यान दो। यदि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 100 से 140 है तो उसके हिसाब से डोज एडजस्ट करो। यदि आप समझ सकते हैं कि नीचे वाले ब्लड प्रेशर का इम्पोर्टेंस क्या है तो आप उसको मैनेज करो, नहीं तो आप नीचे वाला छोड़ दीजिए। नीचे वाला ब्लड प्रेशर यदि थोड़ा लोअर साइड में है मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि ऊपर साइड में है तो उसको ट्रीट करना जरूरी हो जाता है।
1: ब्लड प्रेशर एग्जामिन कर,
0: तो ब्लड प्रेशर यदि 100 के नीचे जा रहा है तो आपको नमक नींबू का पानी लेना है, कुछ ORS पाउडर जो रहता है वो लेना है, पानी में डाल के पानी एक्स्ट्रा लेना है, और सडन चेंज ऑफ पोजीशन, सो के बैठ के खड़े होते समय या सो के खड़े होते समय झटके से खड़े नहीं होना है कि चक्कर आके गिर जाए बेहोश हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। तो एक लो ब्लड प्रेशर होने पे और डोज स्किप करना है, 100 से 140 है तो सेम डोज लेनी है, और 140 के ऊपर यदि है तो जैसा वो कर रही है कि डोज एडजस्ट करती हैं, जैसा आर्बिटेल जो है उसमें टेलमिसार्टन नाम का मेडिसिन है, समझ के किया। तो वो मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि वो बहुत अच्छे से अपने आप को मैनेज कर रही है।
1: एक श्रोता है लाइन पर। हेलो।
3: हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम, मला डॉक्टरांना विचारायचं होतं।
0: हो बोलिए।
1: तुमच्या रेडिओ सेटचा आवाज थोडा कमी करा।
0: रेडिओ का आवाज कम करेंगी और फिर से पूछेंगी।
3: हात का ऑपरेशन होने के बाद ते भुईमुगाच्या शेंगा वगैरे जे आपण खात असतो उकळलेल्या, आता सीजन वाईज येतात त्या काही प्रॉब्लेम करतात का त्यांनी?

0: के लिए बहुत अच्छे इफेक्टिव मेडिसिन्स नहीं होते थे, और जो थे उनके साइड इफेक्ट ज्यादा थे। लेकिन अभी बहुत सारे नए मेडिसिन्स आ गए हैं जिससे ट्राइग्लिसराइड को इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन हार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से LDL हमारा प्राइमरी टारगेट है, ट्राइग्लिसराइड सेकेंडरी टारगेट है।
1: एक श्रोता है लाइन पर। हेलो
2: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, मैं अमरजीत सिंह बरौन नागपुर लश्करी बाग से।
0: बोलिए अमरजीत जी।
2: सर ये सर मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो रोबोटिक सर्जरी जो है, मतलब ये कितना हेल्पफुल है, मतलब हार्ट पेशेंट में, मतलब क्या एक कॉमन मैन इसको अफोर्ड कर सकता है? और सर एक छोटी सी बात यह है कि कोरोना टाइम में हमने बहुत बार पढ़े सुने थे कि ये जो लहसुन जो होता है, गार्लिक जो हर मतलब किचन में अवेलेबल है, तो क्या अगर सर खाली पेट इसको एक दो मतलब रोज डेली खाए तो क्या इससे हार्ट की क्लेंजिंग होती है या नहीं, मतलब? थैंक यू सर।
0: अमरजीत जी आपके दोनों प्रश्न बहुत अच्छे हैं। रोबोटिक सर्जरी एक न्यू डेवलपिंग फेज है जिसमें रोबोटिक आर्म यूज करके सर्जरी की जाती है। तो रोबोटिक आर्म यूज करने से जो प्रिसीजन रहती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग का जरूरत होता है। जैसा हाथ से वर्क करने की ट्रेनिंग हमने ले ली, लेकिन हमारा हाथ कंप्यूटर पे है और हमारी जगह दूसरा कोई हाथ वहां पे अंदर काम कर रहा है और हमारे हिसाब से हिल रहा है, तो उसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग का जरूरत होता है जिसमें डमी मॉडल्स जो होते हैं उसके ऊपर ट्रेनिंग ली जाती है। एक एडिक्वेट लेवल की ट्रेनिंग के बाद में रोबोटिक सर्जरी का प्रिसीजन नॉर्मल सर्जरी से बेहतर होना चाहिए, ऐसा मैं प्रिज्यूम करता हूं। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जितना लिटरेचर मैंने पढ़ा है उसमें दो चीजें हैं कि ये इंटरनल मेमोरी आर्टरी के डाइसेक्शन के लिए हेल्पफुल है। तो जब इंटरनल आर्टरी मेमोरी को हम हार्वेस्ट करते हैं तो उसको निकालने के लिए उस डेप्थ तक जाके नॉर्मली हम नहीं देख पाते हैं, तो रोबोटिक आर्म से जो वहां पे कैमरे लगे होते हैं वो कैमरे से वहां पे अंदर तक माइक्रो कैमरे से हम अंदर तक देख सकते हैं और उससे एडिशनल बेनिफिट मिलता है। लेकिन ये जो है एक इंटेंसिव ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट इसके लिए है, तो जो लोग ट्रेंड लोग हैं उनके हाथ में रोबोटिक प्रोसीजर का एडिशनल बेनिफिट है।
1: एक कॉल लेते हैं सर। हेलो हेलो
3: हाँ हेलो मैडम, मला सरंती बोलायचं आहे। मी इंदू मेश्राम बोलते जवाहर नगर वरून।
0: बोलिए।
3: हा सर, थोडासा हार्टचा प्रॉब्लेम असला तर सूप वगैरे खाता येत नाही का सर?
0: सूप खा सकते हैं, उसमें मक्खन बटर नहीं डालने का, सूप लेने का, लेकिन सूप में जो अपन
3: सूप नहीं देसी घी
0: तूप खा। देखिए जितनी चीजें खाने पीने के लिए बनी है वो सारी चीजें अपने शरीर के लिए अच्छी हैं, प्रोवाइडेड हमने उसको लिमिट में लिया। अभी यदि आप बोलेंगे कि तूप ले रहे हैं तो मैं रोज 100 ml तूप लूं, नहीं। लेकिन यदि आप तूप ले रहे हैं, 10 ml तूप रोज लेते हैं, 10 ml घी रोज लेते हैं, तो वो सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: दाल में
0: थोड़ा सा डाल लें, थोड़ा रोटी के साथ यूज कर लें, लेकिन बहुत ज्यादा घी यदि यूज करेंगे तो उससे ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, उससे हार्ट में और पेनक्रियाज में प्रॉब्लम हो सकती है। तो लिमिटेड मात्रा में घी अच्छा है, और इसके अंदर में जो वेजिटेबल घी होता है वो यूज नहीं करना चाहिए। वेजिटेबल घी में सैचुरेटेड फैट्स ज्यादा होते हैं, तो जो नॉर्मल गाय का घी है या भैंस का घी है जो घर में बनाते हैं वो घी वापरना चाहिए, वनस्पति घी नहीं वापरना चाहिए
1: जी।
0: मैं मेरे सब पेशेंट को हमेशा बोलता हूं और मैं खुद भी फॉलो करता हूं कि जीभ और हार्ट ये दोनों के बीच में आप सामंजस्य रखिए। जीभ के लिए हार्ट को परेशान ना कीजिए और हार्ट के लिए जीभ को परेशान ना कीजिए। आपने हार्ट का बहुत ध्यान रखा, एकदम रूखा सूखा खाना चालू किया, तेल घी जीरो कर दिया, बिल्कुल जीरो जीरो जीरो, मजा नहीं आया, जिंदगी का मजा खत्म हो गया। जब तक हम अच्छा खा रहे पी रहे नहीं है तब तक जिंदगी का मजा क्या है?
1: तो
0: हार्ट के लिए जीभ को परेशान मत करो, लेकिन जीभ के लिए हार्ट को परेशान मत करो। खाने बैठे 5 समोसे खा रहे हैं, 5 समोसे खाए, 2 कचोरी खाई, साथ में फिर 4 रसगुल्ले और 2 आइसक्रीम खाई, तो इतना हार्ट के ऊपर भी अत्याचार मत करो।
1: खाओ लिमिट में।
0: तो एक पोर्शन साइज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पोर्शन साइज ध्यान रखते हुए आप वेज खा रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, जो खा रहे हैं वो आप, जो आप आपकी आदत है, जो आप पसंद करते हैं वो लीजिए, लेकिन उसके पोर्शन साइज की तरफ ध्यान रखिए और उसका कुकिंग कैसा किया जा रहा है इसका ध्यान रखिए। यदि एक हम मंथ का एलोकेशन देखेंगे तो पर पर्सन पर मंथ एक 900 से 1000 ml तेल घी मक्खन मलाई मिला के यदि हमने लिया तो ये हमारी जीभ को भी ठीक ठाक रखेगा और हार्ट को भी ठीक ठाक रखेगा।
1: डॉक्टर, समय हो चला है, हमारी प्रेग्नेंट लेडीज जो श्रोता है तो उनको आप कुछ बताना चाहेंगे?
0: प्रेगनेंसी के समय यदि आपको हार्ट

0: की प्रॉब्लम है तो आपको रेस्ट नॉर्मल से ज़्यादा लेना है, डॉक्टर के सुपरविजन में ट्रीटमेंट लेनी है, और डिलीवरी जो है वो ऐसे हॉस्पिटल में करना जहाँ पे हार्ट और गायनेक दोनों फैसिलिटी अवेलेबल हैं, ऐसे
1: खास तौर पर
0: हॉस्पिटल
1: जिन्हें
0: में
1: प्रॉब्लम है
0: जिन्हें
1: कुछ
0: प्रॉब्लम है उन्होंने ऐसा प्लान करना चाहिए, वो विशेष ध्यान
1: सारी
0: रखना है।
1: सुविधाएं वहां पर
0: सारी
1: होनी
0: सुविधाएं
1: चाहिए
0: वहां पे होनी चाहिए
1: जी।
0: कि जहां पे सुविधा है वहां पे यदि ऑपरेट किया तो इवन हार्ट डिजीज के साथ प्रेगनेंसी को हम सेफली मैनेज कर सकते हैं। जिन महिलाओं को हार्ट कमजोर है, हार्ट की पंपिंग 40% से कम है, या हार्ट में ब्लड की मिक्सिंग हो रही है, आइजनमेंगर सिंड्रोम या टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो या कॉम्प्लिकेटेड हार्ट डिजीज यदि है, तो ऐसी महिलाओं को प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी चाहिए। वॉल में चोकअप यदि है तो प्रेगनेंसी अवॉइड करनी चाहिए। यदि हार्ट की वॉल में लीकेज है, हार्ट में छिद्र है लेकिन हार्ट के अंदर का प्रेशर नॉर्मल है और हार्ट की पंपिंग नॉर्मल है, तो ये महिलाएं
1: कर
0: प्रेगनेंसी
1: सकती
0: अच्छे
1: हैं
0: से टॉलरेट कर सकती हैं,
1: थोड़ा सा डॉक्टर से सलाह लेके
0: डॉक्टर से सलाह
1: जी।
0: लेके।
1: प्लेटिना हार्ट हॉस्पिटल सीताबर्डी नागपुर प्रस्तुत हेलो डॉक्टर, हाँ लाइव फोन इन कार्यक्रम आपण ऐकत होता, विषय होता हृदयरोगाअंतर्गत प्रेग्नन्सी आणि हार्ट डिसीज। तज्ज्ञ होते डॉक्टर प्रमोद मुंधडा, या कार्यक्रमासाठी तांत्रिक सहाय्य लाभलं नंदकिशोर पोकळे आणि सतीश कोलमडवार यांचं, निर्मिती सहाय्य अतुल साखरकर यांचं, या कार्यक्रमाचे सादरकर्ते सचिन लाडोळे। आता मी शीतल डॉक्टर प्रमोद मुंधडा यांच्यासह या कार्यक्रमातून तुमची रजा घेते, नमस्कार। हॅलो
2: लाईव्ह प्रायोजित कार्यक्रम हॅलो डॉक्टर आपण ऐकलात आकाशवाणीच्या नागपूर केंद्रावरून। आपण ऐकत आहात आकाशवाणीच्या नागपूर केंद्राचे कार्यक्रम। 10:30 झाली आहेत। प्रसारित करीत आहोत ऑल इंडिया रेडिओचे 90 वर्ष हा कार्यक्रम।
3: श्रोताओं, प्रस्तुत है ऑल इंडिया रेडियो के 90 वर्ष अंतर्गत आकाशवाणी नागपुर की सेवानिवृत्त कार्यक्रम प्रमुख सुनालिनी शर्मा, इनसे स्वप्ना देव की बातचीत। ऑल इंडिया रेडियो के 90 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए सभी सुनने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल इंडिया रेडियो के 90 साल इस कड़ी में आज हमने हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित किया है सेवानिवृत्त कार्यक्रम प्रमुख सुनालिनी शर्मा इनको। मैडम नमस्कार, आपको ऑल इंडिया रेडियो के 90 वर्ष की शुभकामनाएं।
4: मैं आकाशवाणी को शुभकामनाएं देती हूँ क्योंकि आकाशवाणी एकमात्र माध्यम है जिन्होंने 90 इयर्स कंप्लीट किया है
3: जी,
4: और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और कोई नहीं है
3: जी। बिल्कुल सही बात कही आपने। मैडम, आपने आकाशवाणी कैसे ज्वाइन किया?
4: आकाशवाणी से यूं समझ लीजिए कि मेरे नसीब में ही जुड़ा हुआ था। मैं जितनी बार आकाशवाणी से भागने की कोशिश की उतनी बार आकाशवाणी ने मुझे खींच के लाए। पहली बार तो जब मैंने एग्जाम मैंने फॉर्म भरा
3: जी,
4: मैं भूल गई एग्जाम। एग्जाम के दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे याद दिला, अरे तेरा कोई एग्जाम था ना, तो तब मैंने देखा अरे हाँ आकाशवाणी का है, तो जाके बैठ गई। अच्छा, तब मैं LIC वगैरह दूसरे इसमें एग्जाम की तैयारी कर रही थी लेकिन ये टोटली भूल गई थी। फिर भी मैं तैयार होकर जैसे तैसे बैठ के एग्जाम में आ गई। फिर मैंने हाँ कुछ पढ़ाई तो किया नहीं है, क्या निकलूंगी ये सोच के मैं दूसरे सब उसमें ध्यान दे रही थी
3: जी।
4: फिर पास हो गई तो वो एक है
3: जी।
4: अच्छा ठीक है, चलो पास हो गए तो देखेंगे बाद में क्या होता है। फिर पोस्टिंग आई तो सांगली आए तो मैंने छोड़ दिया। यानी August 15 को मेरा एक्चुअल मेरा ज्वाइनिंग होना था तो मैं गई नहीं क्योंकि मुझे तब महाराष्ट्र एक्सप्रेस एक अकेली ट्रेन थी जो 26 घंटा लगाती थी सांगली जाने के लिए
3: जी।
4: तो मेरे घर में सब लोग ने बोला इतनी दूर कैसे जाएगी अकेली, तो फिर मैंने छोड़ दिया, मैं गई नहीं। फिर यानी क्या बोलते एक हमारे ऑफिसर हिंदी ऑफिसर थे उस वक्त नायडू जी, तो वो मुझे रास्ते पे मिले, सीधे रास्ते के बीच में खड़े होकर बोले क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे हो? तो मैंने बोला बहुत दूर है। अरे नहीं नहीं सब होता है, तुम ज्वाइन तो करो। फिर से सोचा, फिर जो वापस आकाशवाणी में आए और ज्वाइन की, मैंने सांगली में ज्वाइन की। फिर क्योंकि मेरे हस्बैंड का नॉन ट्रांसफरेबल और गवर्नमेंट वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो मुझे यहाँ फिर पोस्टिंग नागपुर में मिल गई।
3: क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। और उस वक्त आकाशवाणी का माहौल कैसे था?
4: उस वक्त तो बहुत सब दिग्गज लोग थे, यूं कैसे बोल सकते हैं, सब प्रोफेशनल्स थे। जैसे हमारे तब SD थे कुमार साहब, फिर अशोक बड़े जी थे, इंगोले जी थे, पिंपल गणेश साहब जो म्यूजिक के अधिकारी थे, ऐसे सब बड़े

0: उनसे मुझे डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, वो सब मुझे सीखने को, क्योंकि मेरी ये पहली नौकरी थी, मैंने कभी कोई जॉब नहीं किया था। अच्छा, मजा की बात है कि मैंने आकाशवाणी में मुझे सिर्फ विविध भारती मालूम थी। अच्छा,
1: जी
0: दूसरी भी चैनल, ऐसा प्राइमरी चैनल होता है, वो भी नहीं पता था मुझे।
1: अच्छा
0: और सबसे बड़ी, जब मैं ज्वाइन की तो मुझे शिफ्ट में डाला गया,
1: हाँ
0: तो मेरा बेटा जस्ट 1.25 महीने का था, तो मुझे
1: अच्छा
0: कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैं शिफ्ट में करती थी। तो मैं यही सोचती थी बचपन से, मुझे विविध भारती के गाने, विविध भारती ने मुझे इतना लगाव था कि मुझे ये विविध भारती यानी आकाशवाणी, बस उसके
1: जी
0: अलावा कुछ नहीं मालूम था।
1: जी जी और मैडम, आकाशवाणी में सबसे बड़ी उपलब्धियां किसे मानते हैं, ये हमें बताइए।
0: नहीं, जैसे मैंने कहा कि बचपन से मुझे विविध भारती का बहुत शौक था,
1: हाँ
0: तो इसलिए विविध भारती ही मेरी लाइफ, यानी यूं बोल सकते हैं कि जो मेरा शौक था वही मेरा काम बन गया।
1: जी
0: तो उसमें मुझे इतना इंटरेस्ट आने लगा, तो यहाँ पर जो पहले नवघरी जी करके जो ऑफिसर थे,
1: हाँ
0: उन्होंने काफी काम कर लिया था विविध भारती में, तो उनको चेंज चाहिए था,
1: अच्छा
0: लेकिन उनके बदले किसको देना, ये एक ऑफिस को बड़ी ये थी, क्योंकि कोई काम करने को तैयार नहीं था। तो मुझे तो विविध भारती पहले से ही पसंद थी,
1: जी
0: तो इसलिए मैंने फिर उनको बता, रिक्वेस्ट किया, तो मुझे फिर वो उन्होंने पूरा सिखाया,
1: अच्छा
0: और फिर वैसे मेरी विविध भारती की सफर शुरू हो गई।
1: अच्छा अच्छा और अभी ये पूछना चाहती हूँ कि आकाशवाणी नागपुर में आपकी क्या-क्या उपलब्धियां हैं।
0: उपलब्धियां बोले तो बहुत सारी है, लेकिन मेन तो विविध भारती और मार्केटिंग ही बोलूंगी, क्योंकि
1: अच्छा
0: उसके चलते ही मुझे आकाशवाणी अमरावती में सेटअप करने का मौका मिला,
1: अच्छा
0: जो सबको नहीं मिलता है। यहाँ विविध भारती भी जो थी वो एक टेबल लेके वो चल रही थी, जो कोई इतने बड़ा चैनल है,
1: हाँ
0: तो वहां पर इसको कोई जगह भी नहीं थी नागपुर में,
1: जी
0: तो उसके लिए रूम से लेके पूरी मशीनरी से सब मैंने यहाँ पर स्थापित किया।
1: जी
0: तो ये सब इन्हें, हमारे सब सीनियर ऑफिसर्स ने देखा हुआ था, तो जब मेरा अमरावती भी हुआ तो उनको मालूम था कि हाँ ये सेटअप देख देगी करके। दूसरी बात है, गाने का शौक होने की वजह से उसकी वजह मैंने प्रोग्राम्स भी शुरू किए,
1: अच्छा
0: और इसी की वजह से मेरे डायरेक्टरेट ने भी उसको बहुत सराहा जब मैंने आकाशवाणी अमरावती चालू किया था। तो
1: अच्छा मैडम, अभी ये पूछना चाहती हूँ कि आकाशवाणी नागपुर में आपकी क्या-क्या उपलब्धियां हैं।
0: जैसे मैंने कहा कि विविध भारती मेरा शौकीन ये था,
1: हाँ
0: एक दिन मैं शिफ्ट ड्यूटी कर रही थी तो मुझे फोन आया कि मुझे नंबर चाहिए मुंबई का, मुंबई ने चाहे लो मेरी पसंद ऐसा कुछ तो भी आपकी पसंद ऐसा शुरू किया था। जब इन लोग इतने नागपुर से ट्राई कर रहे तो नागपुर में क्यों ना चालू करें,
1: जी
0: तो इसलिए फिर मैंने हेलो मेरी पसंद शुरू किया,
1: अच्छा
0: और उसमें स्पॉन्सरशिप भी जो मिले वो
1: हाँ
0: उन्होंने भी, उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने 25 साल के ऊपर स्पॉन्सरशिप दी।
1: जी, अभी भी बहुत अच्छा पॉपुलर प्रोग्राम है वो।
0: हाँ, अभी भी चल रहा है।
1: जी
0: तो वो चलते देख मैंने फिर मराठी फोन इन प्रोग्राम ये चालू किया, लेकिन उसमें मुझे इतना लोगों का प्रतिसाद नहीं मिला।
1: अच्छा
0: फिर वह नॉन फिल्मी हेलो हंगामा भी चालू किया था, तो उसमें भी इतना लोगों का प्रतिसाद नहीं मिला। फिर आया सुनहरे नगमे, तो उसमें भी स्पॉन्सर, वो कैसा था कि पुराने गानों के लिए था, तो वो तो जहां गाने की पता ही, तो वहां पे मैं हाजिर हूँ। नीलावार करके जो हमारे स्पॉन्सर जो शायद आप जो भी है,
1: हाँ
0: उन्होंने 1 महीने बोला था कि
1: अच्छा
0: मैडम हम सिर्फ 1 महीना दे के देखेंगे, अगर हमको अच्छा लगा तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे।
1: जी
0: तो आज बाय ग्रेस ऑफ गॉड, यानी आज भी वो हमारे स्पॉन्सर बने हुए हैं।
1: जी जी
0: फिर उसके बाद गुड मॉर्निंग नागपुर चालू किया,
1: हाँ
0: जिसमें अलग अलग फील्ड से हम लोगों ने इंटरव्यू चालू किए,
1: अच्छा
0: जैसे कलेक्टर है, मिनिस्टर है, डॉक्टर है, वकील है, एक्सेट्रा। हमारी एक टीम अच्छी मिल गई थी उसमें, जिसमें हमारे अच्छे अनाउंसर्स थे, श्रद्धा भारद्वाज, जयंत पात्रीकर, सैमसन मानवटकर, अंजलि दुरुककर, ये सब मैंने, हमारी एक टीम बन चुकी थी।
1: जी
0: फिर उसके बाद आपके SMS आपके गीत, तब तक कंप्यूटर आ चुका था,
1: जी
0: तो जयंत पात्रीकर को लेके हमने ये चालू किया था, कारण के वजह से हम उसको हमें बंद करना पड़ा।
1: अच्छा और मैडम, ऑल इंडिया रेडियो के आधुनिकीकरण या फिर डिजिटलाइजेशन में आपकी बहुत अहम भूमिका थी, तो वो क्या थी?
0: पहले आपको ये मालूम नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, तब हम हमारे यहाँ जो काम करते थे, हम स्पूल्स पे करते थे,
1: अच्छा
0: टेप पे करते थे, तो
1: हाँ
0: अभी जैसे ये हेलो मेरी पसंद जो गाना में प्रोग्राम था, हमको डबल मेहनत करनी पड़ती थी, एक स्टूडियो से गाना रिकॉर्ड करो, फिर से वो गाना को फिर से पैच करो।
1: अच्छा
0: तो लेकिन जब कंप्यूटर आया तो वो
1: हाँ
0: कॉपी पेस्ट पे आ गया, तो
1: जी
0: हमको बहुत अच्छा लगने लगा और इंटरेस्ट जाग गया कि
1: हाँ
0: वाह ये तो बहुत बढ़िया है, हमारा टाइम भी बहुत सेव हो जाता है उसमें। कुछ भी नया सीखने के लिए मुझे पहले से बहुत ही शौक थे, तो कंप्यूटर में मैं घुस गई, और जो जो जो है नॉइस रिडक्शन से लेके जो भी है सॉफ्टवेयर है सब मैंने सीखना शुरू किया, घर पे भी सीखती थी मैं।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा।

0: फिर यहाँ लाइब्रेरी में फिर सीडीज आ गई।
1: हाँ।
0: सीडीज कभी कभी क्या होते थे, स्क्रैचेस आने से वो अटक जाती थी।
1: हाँ।
0: तो फिर उसका कंप्यूटराइजेशन किया।
1: अच्छा।
0: पूरी सीडीज जो थी हमने हार्ड डिस्क पे ले ली।
1: अच्छा।
0: वो एक नागपुर अकेला स्टेशन था तब जिसने ये काम किया था। बहुत बड़ा काम है, यानी इतनी सारी टेप, इतने सारे कैसेट, इतने सारे सीडीज, उनको पूरा हार्ड डिस्क पे लेना।
1: अच्छा।
0: वो एक बहुत इसमें यानी बिल्कुल भारी काम था वो, लेकिन वो भी फिर हम लोग ने तो उससे क्या का स्मूथ हो गया
1: जी।
0: कहीं क्या अनाउंसर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आता था, कुछ नहीं, क्योंकि वो अपना प्लेलिस्ट बना लेते थे और उसको ये बजा लेते थे। इसमें ने एक मुझे याद है एक जर्मन रेडियो भी आया था जिसमें राजपूत जी ने और मैंने, हम दोनों अनाउंसर न होने के बाद भी वॉइस ओवर किया था।
1: अच्छा।
0: फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो वो भी हम उसमें भी हमको बहुत अप्रिसिएशन मिला था। अनिल देशमुख साहब थे।
1: अरे वाह।
0: उनके अंडर में हम लोग ने क्या किया था ये। वैसे तो विभिन्न सेक्शन में काम किया है मैंने, वो जैसे उर्दू, इंग्लिश, म्यूजिक, अलग अलग कामगार जो भी है, लेकिन विविध भारती के पास जो इंक्लिनेशन था, यानी जो बचपन से भी ये था, तो वो विविध भारती और मार्केटिंग पे ही रहे।
1: क्या बात है मैम। और सुनालिनी मैम, प्रोग्राम के अलावा प्रशासनिक कार्य भी आपने बहुत किए हैं, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे।
0: हाँ, जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे कोई भी चीज नई नहीं रहे तो मुझे सीखने की बहुत इच्छा रहती थी
1: जी।
0: तो डीडीओ का काम मुझे सौंपा गया।
1: अच्छा।
0: तो मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट, मैंने उसको निभाया है। फिर वर्किंग वुमेन सेल की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हूँ, ऑफिस के भी दो तीन मसले थे उसको सुलझाया था। फिर इलेक्शन ऑफिसर भी रही, विजिलेंट ऑफिसर भी रही हूँ, और इलेक्शन जब आते थे तो एमसीएमसी कमेटी की भी मेंबर रह चुकी हूँ आकाशवाणी की तरफ से।
1: और आपने स्पोर्ट्स में भी एयर नागपुर को रिप्रेजेंट किया है, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे।
0: हाँ, वो बहुत ही मजेदार किस्सा है।
1: अच्छा।
0: क्योंकि तब तक आकाशवाणी ने कोई इंटर ऑफिस में कभी पार्ट नहीं लिया था, तो मैंने कैरम में लिया था।
1: अच्छा।
0: तो कैरम में मैंने और वीना कुलकर्णी मैडम, हमारी जो लाइब्रेरियन थी, हम दोनों डबल्स और सिंगल्स खेले थे।
1: हाँ।
0: और आकाशवाणी में जीत कर आए थे।
1: बहुत बढ़िया। सुनाली मैम, ऑल इंडिया रेडियो अमरावती का सेटअप भी आपने किया है, तो उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे।
0: मैंने जैसे कहा कि विविध भारती का मेरा इंक्लिनेशन था।
1: हाँ।
0: विविध भारती मुझे बचपन से पसंद है, तो डायरेक्टरेट जो हमारी थी उनको भी एक ऐसा ऑफिसर चाहिए था जो मार्केटिंग एज वेल एज विविध भारती संभाल सके। क्योंकि उनको तीन स्टेशन चालू करने थे, एआर ओरस, एआर माउंट आबू और एआर अमरावती।
1: अच्छा।
0: तो उनको एक ऐसा, तब मेरी ट्रांसफर बीड हुई थी
1: जी,
0: तो जब ये अमरावती का आया तो उन्होंने मुझे बीड की जगह अमरावती पोस्ट कर दिया।
1: अच्छा।
0: तो लेकिन उन्होंने मुझे एक बोला कि मैडम ये आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि इसके पहले जब सर्वे किया गया था तो एक ऑफिसर ने लिख के दिया है कि यहाँ ना तो प्रोग्राम चालू हो सकता है ना तो मार्केटिंग हो सकता है, क्योंकि प्रोग्राम नहीं तो मार्केटिंग नहीं
1: जी।
0: सो मैंने सोचा ठीक है, ऊपर वाले है साथ में। तो ले लिए। तब तक अमरावती का ए नहीं मालूम था, मैं कभी अमरावती गई नहीं थी। तो फिर वहां से मैंने, लेकिन विविध भारती था तो वो एक मेरे को दिलासा था कि यस आई कैन डू इट। फिर ऑडिशन लिया, तो वहां पहले तो सेटअप किया, वहां स्टूडियो नहीं था, टेक्निकल वालों का एक रूम था, वो रूम में से सामान हटा के उसको स्टूडियो बनाया।
1: अच्छा।
0: जो आज भी आप अगर अमरावती गए हाँ। तो आपको दिखेगा वो ब्रॉडकास्ट स्टूडियो में से वो जाना पड़ता है।
1: अच्छा।
0: हाँ। लेकिन वहां पर टेक्निकल स्टाफ ने मुझे बहुत मदद की, क्योंकि मैं अकेली थी, ना अनाउंसर था, ना डीओ था, ना कोई नहीं था। फिर उसके बाद ऑडिशन लिया, ऑडिशन में कैजुअल अनाउंसर्स आए, फिर एक डीओ फिर हमको दिया गया और एक परमानेंट अनाउंसर अकोला से दिया गया।
1: अच्छा।
0: तो इस तरह से फिर हम 15 दिसंबर को हमने स्टार्ट किया
1: जी
0: एआर अमरावती, लेकिन इस वक्त तक ओरस और अमरावती शुरू हुआ था, माउंट आबू भी बंद हो चुका था।
1: अच्छा।
0: उनकी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी इसलिए।
1: अच्छा।
0: लेकिन वहां पर जो लोगों का जो प्रतिसाद मिला, नागपुर के लोगों से मुझे ज्यादा वहां पर इंटरेस्टेड दिखे, क्योंकि मैंने जब सर्वे किया मैंने क्वेश्चनेयर बनाया था।
1: हाँ।
0: कि उनको क्या चाहिए, तो उसमें मुझे पता चला कि जितने भी थे सबको विविध भारती चाहिए था। वो फर्स्ट स्टेशन था आकाशवाणी का, इसलिए उनको सबने आके मुझे ने बोला कि मैडम विविध भारती। हाँ सर, विविध भारती ही रहेगा, क्योंकि 26/11 को मैंने आकाशवाणी अमरावती ज्वाइन किया था।
1: अच्छा।
0: 2015 में 15 दिसंबर 2015 को शुरू होना था।
1: अच्छा।
0: तो मेरे पास सिर्फ 15 डेज थे चालू करने के लिए, तो इस दौरान में मैंने पूरा स्पीड

0: पर कर लिया, लोगों को क्या चाहिए क्या, प्रोग्राम्स चौक आउट किए, फिर यहाँ से हेल्प मिली। यहाँ पर हमारे यहाँ जो टाइपिंग सेक्शन में जो चंद्रकांत बाजीराव जी थे उनसे हेल्प मिली और वो ऑडिशन में उन्होंने मुझे काफी मदद की।
1: अच्छा,
0: इस तरह से कैजुअल अनाउंसर्स के ऑडिशन लिए गए और फिर 15 दिसंबर को बराबर जो हमको डेडलाइन दी थी हमने आकाशवाणी अमरावती शुरू की।
1: क्या बात है, बहुत इंटरेस्टिंग।
0: उसके अलावा राजभाषा समिति में भी फिर हमको आकाशवाणी अमरावती से हिंदी में पुरस्कार मिले। फिर संस्कार गीत के जो एक प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट का था तो सिर्फ 3 जितने स्टेट्स थे उसमें सिर्फ 3 लोगों ने कंप्लीट किया था, उसमें से अमरावती एक था।
1: अच्छा,
0: तो उसके अप्रिसिएशन लेटर भी हमको मिला है था। और बाद में फिर मार्केटिंग आया।
1: हाँ,
0: तो मार्केटिंग में भी उन्होंने इतना हमको अच्छा सा ये प्रतिसाद दिया वहाँ के लोगों ने। फर्स्ट जो था तो 5 लाख का मुझे टारगेट दिया गया था तो मैंने 10 कर दिया था। दूसरी इसमें 7 किया दिया था टारगेट तो 15 हो गया था। और थर्ड में 20 लाख दिया था तो उसको 50 कर दिया। और फोर्थ में मैं नागपुर आ गई। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने पंक्चर वाले से भी बर्थडे ग्रीटिंग लिया था।
1: अच्छा,
0: यानी मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि ग्रीटिंग बोलो, टाइम चेक बोलो, स्पॉट्स बोलो, एडवर्टाइजमेंट बोलो, जो भी है हर फील्ड से मार्केटिंग करना है। तो वहां पर आकाशवाणी अमरावती का इतना क्रेज हो गया कि लोग आके ये देने लगे एडवर्टाइजमेंट, हमको देना है करके। तो मेरे एक टाइम ऐसा था कि मेरे जितने प्रोग्राम थे सब स्पॉन्सर चल रहे थे। जैसे गुड मॉर्निंग नागपुर मैंने यहाँ किया तो मैंने वहाँ हेलो अमरावती चालू किया था।
1: हाँ,
0: तो वहाँ पर फिर हेलो वकील साहब चालू किया था, यानी एडवोकेट को बुला के। तो जितने थे सब पूरे ये स्पॉन्सर चल रहे थे।
1: बहुत बढ़िया। और सुनालिनी मैम, हमको आपके अवार्ड्स के बारे में जानना है, आपको जो जो अवार्ड्स मिले।
0: जी जी जी, वैसे अवार्ड तो काफी मिले थे लेकिन जो चुनिंदा है मैं आपको बता दे रही हूँ।
1: हाँ,
0: जब मैं आकाशवाणी अमरावती ज्वाइन की थी तब मुझे जिजाऊ बैंक ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी वर्क इन मीडिया का अवार्ड दिया था। फिर कामगार कल्याण मंडल उसने कंट्रीब्यूशन टू मीडिया में का अवार्ड दिया था।
1: अच्छा,
0: फिर निर्भय ऑर्गेनाइजेशन है जो औरतों के लिए ये काम करता है तो मेरा कंट्रीब्यूशन, जो भी मैंने प्रोग्राम्स औरत यानी वुमेन बेस्ड प्रोग्राम किए थे उसके लिए मुझे अवार्ड दिया था। फिर तीसरा इंस्पायरिंग वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था डॉक्टर पाचलोरी फाउंडेशन की ओर से।
1: अरे वाह,
0: मीडिया में कंट्रीब्यूशन के लिए अनुराधा पौडवाल जी ने दिया था वो।
1: अच्छा
0: हाँ, और फिर कलेक्टर जो अमरावती थे तो वहाँ पर बहुत बड़ा चिक्कलधारा महोत्सव होता है तो हमारा जो उसमें पार्टिसिपेशन था तो उसके लिए उन्होंने अप्रिसिएशन लेटर दिया था। और फिर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय की ओर से भी हमको एक अप्रिसिएशन लेटर मिला था अमरावती के लिए। और फिर यहाँ नागपुर में आने के बाद तब कोविड चालू हो गया था तो कोविड योद्धा 2020 का वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक हमारा जो काम था कोविड में उसके लिए फिर अवार्ड दिए थे।
1: क्या बात है, बहुत ही अच्छा। और सुनालिनी मैम, आपके टेन्योर को आप कैसे सारांश करना चाहेंगी, या यू कहिए कि किस नजरिए से देखना चाहेंगी?
0: अगर मैं कहना चाहूँ तो वो रहेगा कि मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ।
1: अच्छा,
0: मेरे टेन्योर से कि मैंने जो जो सीखा
1: हाँ
0: वो उसको मैंने अमल कर पाई
1: जी।
0: और ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो स्लोगन है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसको मैंने आत्मसात कर लिया।
1: बहुत ही बढ़िया। और सुनालिनी मैम, जाते जाते हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं यही बोलूंगी कि अभी जो आकाशवाणी में हेड है वो भी एक बिल्कुल डेडिकेटेड पर्सन है राजपूत जी, बस उनसे सब सीखना चाहिए लोगों ने कैसे काम करना है, कैसे प्रोग्राम करना है ताकि आकाशवाणी का नाम हमेशा अच्छा रहे।
1: जी बिल्कुल। ऑल इंडिया रेडियो के 90 वर्ष इस कड़ी में श्रीमती सुनालिनी शर्मा मैडम उपस्थित थी। मैडम, आपके अनुभव और बहुमूल्य विचारों के लिए आकाशवाणी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने जो बातें साझा की वो हमारे सभी श्रोताओं के लिए अनमोल है, हम आपके बहुत बहुत आभारी है। धन्यवाद, नमस्कार।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
1: श्रोताओं, हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के 90 वर्ष अंतर्गत आकाशवाणी नागपुर की सेवानिवृत्त कार्यक्रम प्रमुख सुनालिनी शर्मा, इनसे स्वप्ना देव की बातचीत।
2: ऑल इंडिया रेडियो चे 90 वर्ष हा कार्यक्रम आकाशवाणी नागपुर केंद्रावरून प्रसारित करण्यात आला।

आप सुन रहे थे भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, इस फिल्म से अरिजीत सिंह का गाया, मनोज मुंतशिर का गीत, संगीत दिया था आरको ने। श्रोताओं, आज है 5 जून, आज विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। विश्व पर्यावरण दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित किया गया था। इस ऐतिहासिक सम्मेलन की शुरुआत 5 जून को हुई थी, जिसके उपलक्ष्य में पहली बार 5 जून 1973 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। लेकिन हमारे देश में पर्यावरण यानी धरती, पेड़ पौधे, पर्वत, नदियाँ, इन सब की पूजा की जाती है, इन सबको देव स्वरूप, देवतुल्य माना जाता है। इसलिए हम भारतवासी बहुत पहले से इस वसुंधरा को पूजते हैं, इन पेड़ों को पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं, पर्वतों को पूजते हैं। इसलिए पर्यावरण दिवस हमारा अपना है।

फिल्म का गीत, रचना थी आनंद बख्शी की, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अब सुनते हैं बूंद जो बन गई मोती, इस फिल्म का गीत जिसे गाया है मुकेश ने, रचना भरत व्यास की, तर्ज बनाई है सतीश भाटिया ने।

क्योंकि यह सुंदरता और आश्चर्य से भरा एक विशेष स्थान है। प्रकृति में सब कुछ खास है, पेड़, पौधे, नदियां, झरने, पहाड़, बारिश, जंगल, सूरज, चांद और हम मनुष्य, जो सभी प्रकृति का एक हिस्सा है। कुदरत का नियम है, बनता वही है जो सहने की क्षमता रखता है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है।

श्रोताओं, पर्यावरण, नेचर, प्रकृति हमारी असली माँ के समान है, जो हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि हमारा पालन पोषण करती है। हमें प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए,

हीरो इस फिल्म से आपने सुना लता मंगेशकर का गाया आनंद बख्शी का गीत, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अब सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति के स्वरों में जावेद अख्तर का गीत, संगीत है आर डी बर्मन का, फिल्म का नाम है 1942 अ लव स्टोरी।

पर्यावरण दिवस मनाने के प्रमुख कारण और उद्देश्य ऐसे हैं कि जागरूकता बढ़ाना, सामूहिक कार्रवाई और सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जागरूकता बढ़ाने के लिए लोगों को जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक प्रदूषण और जैव विविधता के नुकसान जैसे गंभीर पर्यावरण मुद्दों के प्रति जागरूक करना, सामूहिक कार्रवाई, दुनिया भर के लोगों, सरकारों और उद्योगों को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम उठाने और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित करना, सतत विकास यानी प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी सुरक्षित रहे। सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वरों में हम है राही प्यार की इस फिल्म का ये गीत।

आशा भोसले, दिलराज कौर और साथियों का गाया सत्ते पे सत्ता इस फिल्म का गीत सुनते हैं। रचना है गुलशन बावरा की, संगीतकार आर डी बर्मन।

श्रोताओं, प्रकृति वह सुंदर और मूलभूत शक्ति है जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखती है। इसमें हमारे आसपास की हर वो चीज समाहित है। विशाल वृक्ष और महासागरों से लेकर नन्हे नन्हे कीड़े और फूलों तक प्रकृति का सामंजस्य परिस्थितिजन्य तंत्रों का संतुलन सुनिश्चित करता है और सभी जीवित प्राणियों के फलने फूलने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है। सुनते हैं प्यार का मौसम। इस फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया मजरू सुल्तानपुरी का गीत। धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

प्रकृति हमारे जीवन का मूल स्त्रोत है। प्रकृति में सजीव और निर्जीव दोनों ही शामिल है और सभी एक दूसरे पर निर्भर है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र बना रहता है। पेड़ पौधे, जानवर और मनुष्य सभी अपने जीवन के लिए प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति ऑक्सीजन, सूर्य की रोशनी, मिट्टी, पानी और अन्य आवश्यक तत्व प्रदान करती है। प्रकृति ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल वरदान है। इसकी सुंदरता में ही दुनिया की असली जान है। पेड़ पौधे, नदियां और पर्वत इसके अभिन्न अंग है। प्रकृति जीवन के सभी रंगों से सजी एक उमंग है। सुनते हैं मोहम्मद रफी का गाया लोफर फिल्म का गीत। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
3: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
3: और डोंडी डोहरा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
2: और मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
3: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेती हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
2: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शैडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
3: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में
2: जी।
3: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं। यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है
2: जी।
3: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
2: श्रोताओं, जहाँ तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है, मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
3: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाशगंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं।
2: क्या बात है!
3: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
2: क्या बात है! श्रोताओं, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कॉमिक गांव

0: स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
1: और श्रोताओं, ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता है। यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
0: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बच्चे भूटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
1: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता है। यहाँ आज भी लोग पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं। इस डाकघर की स्थापना 5 नवम्बर 1983 को हुई थी।
0: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओं, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है। यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है?
1: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
1: कक्षा 4 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है।
2: नकली हीरे।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की
3: जय। बहुत अच्छे से शासन करी
4: खास ऐलान।
1: शांत शांत, आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
5: हाँ हाँ महाराज, महाराज बताइए,
1: हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर।
5: हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
1: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
6: जी महाराज, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका?
1: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
7: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
0: सब दरबारियों ने बात

0: अरी बारी से यही उत्तर दिया।
1: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
0: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
2: जी महाराज, बहुत
3: महाराज की जय हो।
4: महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।
1: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
0: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
1: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
0: महाराज, ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
1: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
0: इसमें संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़कर थे।
1: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
0: धन्यवाद महाराज। अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
5: भाई, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा
6: हुआ? मुझे भी नकली हो सकता है।
5: क्या सबको नकली मिला?
6: अब तुम भी नकली?
5: अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया, सभी ने बोला कि नकली है।
7: महाराज की जय। महाराज की जय। महाराज की जय।
1: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
0: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो हम पूछ लें। महाराज
1: कहिए, मेरी आज्ञा है, आप सभी निसंकोच कहिए।
0: जी धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। महाराज हमने इन हीरों की जांच जौहरी से करवाई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं महाराज।
1: क्या? और कोई शंका?
0: जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है, बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
1: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए, पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
7: महाराज की जय। महाराज की जय। महाराज की जय।
1: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं।

0: और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे, कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
1: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलारू मैं चल चलूं।

0: तो सुनिए अपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और इस कार्यक्रम के बाद आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। ये संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। ये जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को

पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है, इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है।

0: चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं, लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में ये तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस

0: संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया। और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्यीय जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खुण, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
0: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री

0: नाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं।
2: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ ने जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2,00,00,000 से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉ मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
3: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे। यस एंड माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
4: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरण संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है, सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमरीका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर

0: नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
1: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं। लोकल फॉर वोकल है और दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है, जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: प्रसार भारतीच्या वेव्ज ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ऍप सहित 558 किलोहर्ट्सवर आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे अस्मिता वाहिनी। श्रोतेहो, दुपारचे 2:30 वाजले। नाद ब्रह्मांतर्गत शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमात आता ऐकूया जयश्री वैष्णव यांनी गायलेला राग मधमात सारंग। विलंबित ख्याल रूपक तालात निबद्ध असून बोल आहेत जब से मन लागू।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य के विकास को गति देंगी और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होंगी। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इसे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: इससे पहले सूरत में प्रधानमंत्री ने हजीरा में वर्तमान औद्योगिक तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे, जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मोरा सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण

0: शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस नए केंद्र से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवाओं को मजबूती मिलेगी। श्री सिंह ने कहा कि सटीक और समय पर मौसम पूर्वानुमान से कृषि, विमानन, पर्यटन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा। असम मंत्रिपरिषद का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल रक्षम प्रसाद आचार्य ने इस अवसर पर नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे। प्रसारित करीत आहोत प्रादेशिक मराठी बातम्या।
2: आकाशवाणी नागपूर, हेमांगी कुलकर्णी आपल्याला प्रादेशिक बातम्या देत आहे। ठळक बातम्या। नागपूरसह संपूर्ण विदर्भात जागतिक पर्यावरण दिन विविध उपक्रमांनी साजरा। व्याजदर जैसे थे ठेवण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय। आर्थिक वृद्धी दर घटण्याचा अंदाज। विधान परिषद निवडणुकीत माघार घेणारे काँग्रेसचे उमेदवार साहेबराव कांबळे आणि शैलेश अग्रवाल यांची पक्षातून हकालपट्टी। शासन जमिनीसंदर्भातील शर्तभंग प्रकरणांचा निपटारा आता जिल्हाधिकारी स्तरावर होणार। आणि 9 जून पर्यंत संपूर्ण विदर्भात विजांच्या कडकडाटासह वादळाची शक्यता। आता सविस्तर बातम्या। जागतिक पर्यावरण दिन आज साजरा केला जातो आहे। पर्यावरण संरक्षणाबाबत जनजागृती करणं आणि हवामान बदल, प्रदूषण, जंगलतोड तसंच जागतिक तापमान यासारख्या गंभीर समस्यांकडे लोकांचं लक्ष वेधणं हा या दिवसाचा मुख्य उद्देश आहे। हवामानासाठी आणि आपल्या भविष्यासाठी निसर्गाकडून प्रेरणा अशी यंदाच्या दिनाची संकल्पना आहे। ऐकूया याविषयी विशेष रिपोर्ट आमच्या प्रतिनिधीकडून।
3: पर्यावरण दिनानिमित्त केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी देशवासियांना शुभेच्छा दिल्या। निसर्गापासून प्रेरणा घेऊन हवामान बदलाशी लढा देण्यासाठी आणि भविष्यासाठी काम करण्याचा संकल्प अधिक दृढ करण्याचं आवाहन त्यांनी केलं। शहरातील पर्यावरण संवर्धनाला चालना देण्यासाठी नागपूर महानगरपालिकेतर्फे लोकसहभागातून येत्या वर्षभरात 5 लाख रोपट्यांचं वृक्षारोपण करण्याची महत्वाकांक्षी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे। या उपक्रमाचा आरंभ सुयोगनगर इथल्या उद्यानात महापौर नीता ठाकरे यांच्या हस्ते एक पेड माके नाम अंतर्गत वृक्षारोपण करून करण्यात आला। ठाकरे यांनी यावेळी पर्यावरण संरक्षणासाठी वृक्षारोपणाचं महत्व अधोरेखित करत नागरिकांनी या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घ्यावा असं आवाहन केलं। वाढते प्रदूषण, तापमानवाढ आणि पर्यावरणीय असंतुलन लक्षात घेता शहरात मोठ्या प्रमाणावर वृक्ष लागवड करणे ही काळाची गरज असल्याचं त्यांनी सांगितलं। रामटेकच्या संस्कृत विद्यापीठामध्ये जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त कुलगुरू डॉ अतुल वैद्य यांच्या हस्ते बकुळ वृक्षाचं रोपटं लावण्यात आलं। वाशिम जिल्ह्यात मानोरा तालुक्यातील माहुली इथले निखिल चव्हाण यांनी पर्यावरण संवर्धनासाठी 1000 सीड बॉल्स तयार करून वृक्ष लागवड आणि वृक्ष संवर्धनाचा संदेश दिला। अमरावती विद्यापीठ परिसरात परीक्षा विभागाकडे जाणाऱ्या नवीन रस्त्याच्या दुतर्फा प्रतिकात्मक म्हणून 30 कडुलिंबाच्या झाडांचं वृक्षारोपण प्रकुलगुरू डॉ महेंद्र ढोरे यांच्या हस्ते करण्यात आलं। बुलडाणा जिल्ह्यातील लोणार सरोवर परिसरात जागतिक पर्यावरण दिनाचं औचित्य साधून स्वच्छता आणि वृक्षारोपण मोहीम राबवण्यात आली। क्लीन लोणार, ग्रीन लोणार आणि एक घर एक

0: आकाशवाणी गायक वृंदांनी गायलेल्या या रचनेबरोबरच श्रोते हो, आजचा भावधारा कार्यक्रम संपला. थोड्याच वेळात आता दिल्लीहून प्रसारित होणारं हिंदीतलं बातमीपत्र समाचार संध्या. ठीक 9 वाजता न्यूज ऍट 9, 9:15 स्पॉटलाईट, 9:30 करंट अफेअर्स. हे कार्यक्रम दिल्ली केंद्रावरून आम्ही सहक्षेपित करत आहोत. पण आत्ता आधी समाचार संध्या दिल्लीहून.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया. प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया. कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर. वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा. दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया. प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया. प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं.
2: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है. साथियों, आज हमारे लिए

0: सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है,

0: कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद

0: यह वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
1: The negotiating team which came from
2: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
1: With Nepal, we have an expansive agenda.
2: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुग्यानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ

0: पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects in Gujarat and Daman. Prime Minister emphasizes on self-reliance in energy sector, says India actively leading towards green future by balancing economic growth and ecological preservation. Country's GDP growth rate estimated at 7.7% in 2025-26 following strong momentum by the economy. Home Minister Amit Shah says smart border project in its final execution stage, pilot rollout to be introduced next year at sensitive border locations. Southwest monsoon advances further into more parts of Arabian Sea, Goa and Karnataka. And in hockey, India enter final of men's under 18 Asia Cup, beating Pakistan 5-3 in semi-final at Kakamigahara in Japan. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat today, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial one-fifth of the nation's green energy share. He said the current global energy crisis highlights the critical importance of self-reliance in energy. He said the world is gradually progressing towards a greener future and India is actively contributing to this transition.
2: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city.
2: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी, साथ ही यहां सूरत मेट्रो का भी विस्तार हो रहा है। ये सारे कदम हरित शहर के रूप में सूरत की पहचान को और सशक्त करेंगे।
1: After reaching Surat this afternoon, the Prime Minister first visited Hazira and reviewed the ongoing industrial and infrastructure operations. Later in the evening, Mr. Modi launched various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. These projects include major healthcare and aviation infrastructure.
2: आज भी यहाँ कनेक्टिविटी, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसे जुड़ी अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। विकास के ये काम दमन और पूरी यूनियन टेरिटरी के लिए यहाँ के लोगों के जीवन को आसान बनाएंगे। इनसे युवाओं के लिए नए अवसर तैयार होंगे।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज असर्टेड

0: नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।